0: होम डेलिभरीको व्यवस्था छ।
1: प्रोप्राइटर गम्भीर दास नेपाल, मोबाइल नम्बर 9844695436, 9805141437।
0: व्यास 3 प्रशासन चोक दमौली।
2: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet and net TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV sets a box. मात्र रु 12 से प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो बनेकै Willing.
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.